नानक गादी बड़ियाई सगरे जग की बर गुरियाई सो हम देन उठत इस समय जिसके अगे त्रिलोकी नवे जिदे अगे सारा त्रिलोक नमस्कार करदा असि ते ओ गद्दी इनू देन लगे सां। भाव कहण दा साध संगत गुरु हरगोबिंद साहिब दी जपजी साहिब दी सुनाउण बदले चित जोड़ के इतनी प्रसन्नता पर की किया अब भी धन जन्म भव पयो जन्म मरण दुख सब मिट गयो कि अजे भी तेरा जन्म ताने तेरा जन्म मरण सारा ए भी मिट जाएगा। करो मनोरथ जो अब जैसे सो लीजो न बिलमो कैसे जेड़ा मनोरथ बनाया हुण ए मनोरथ तेरा भी पूरा होएगा। कह कर सो घोड़ा मंगवायो सुंदर जिस पर जीन सुहायो आख सतनाम ओह घोड़ा सुंदर जीन वाला महाराज जी ने मंगवाया। सूरज प्रकाश दी पंक्ति है सवा लाख की कीमत जाही होए प्रसन्न बख्शत है ताई प्रसन्न होके ओ घोड़ा बख्शा है। धन गुरु हरगोबिंद जी ने कवि किवें लिख रहा है आओ बड़े

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय का बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नू भी शोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रिका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ।

स्थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब के विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज के ऊपर, उथे बैठ के काल का कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है, दम रुक गया। ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज, ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओह भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी, जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही छप निकलिया, जिसने शिकारी नूं दस्या, शिकारी नूं दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ के छप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न दे पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, तिस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नूं जिथे फंदक खड़ोता सी उस जगह तो सप निकलिया,
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ,

जगी और न यहे महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथराज में अमृत नाम पियो एह मद ते मत चुके रे मन तेज बेद न जान दियो पर ताचिर दे।

सुन बेद बिरंत विचार रहो हर जपन छाडो एक करी। मथुरा गन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्री।

0: remind ourselves of the joy and the inspiration and the love and the hope and the projection and the prayer that we've been blessed to live in this lifestyle through the role model of Guru Gobind Singh. So it's not only that we're celebrating what actually happened on Baisakhi Day, but the spirit behind what Guru Gobind Singh meant and what he felt throughout his life. So the first Shabad that we're going to sing is Hum Ehe Kaaj Jagat Moe Aaye Tarum Hed Gurudev Patai. It's Guru Gobind Singh telling his own story and speaking to us plainly about what he came to this earth to do. So please sing along or sit up straight, close your eyes, meditate, and allow the words of your Guru, of our Guru, to penetrate into your heart so that you leave here feeling like Guru Gobind Singh felt.
1: मैं बस एक गल कहनी चाहता हां कि तुसी अपना बिल्कुल जिदा सी हुन योग जिदा करना सिखया होया रे मन ए विद योग कमाओ पर एक गल है पहला अपना मन नु बिल्कुल शांत करो बिल्कुल हिलना नहीं देना कोई गल नहीं सुनना मन तो बस अपना अखां बंद के दोनों कन्ना नाल सुनना बिल्कुल आसन पूरा पक्का विच बैठ जाओ पूरा पक्का आसन विच बैठो जिदा अपना गुरु साहिबां महाराज बैठदे हैं भावें तुसी हुण अपना जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिदा हुण बैठे हैं हिलदे नहीं तुसी असी सारे जाने इकट्ठे उदा ही बनना एक पुरातन परंपरा हैगे है सारे विद्या जो इंडिया च चलता है वो गुरु शीशा परंपरा नाल चलता है शायद तुसी इस परंपरा का नाम सुनिया होया पर मैं एक गल दसना शिष का मतलब की है गुरु ते शिष शिष हुंदा शिष्या गुरु दे रिफ्लैक्शन गुरु दी एग्जैक्ट रिफ्लैक्शन अगर असं यही गल मनते हैं फिर असी अपना गुरु दे वर्गा बनना सारे जाने सारे संगत कट्ठे आपां अखां बंद करके गुरु गोबिंद सिंह दी यादी च गुरु गोबिंद सिंह वर्गा बनना
0: फिर असी साढ़े नाल कट्ठे बुलावांगे गुरु गोबिंद सिंह जी प्रेम प्यार नाल देख लेंगे कृपा होएगा कि नहीं इसे इट्स अप टू अस टुगेदर
1: आप जपाए जपे सो नाओ गुरु गोबिंद सिंह जरूर मेहर करेंगे जरूर क्यों नहीं अगर इन्ने प्यारे सिख उन्हें इन्ना जबरदस्ती नाल बुलाते हैं नहीं मनन गे जरूर

पलंग राव दे अंदर धन गुरु नानक पातशाह जी ने उन्हां गुरसिखां तो नाम जपण वालियां तो अजूर फरमांदे मैं कुर्बान जांदा हां ऐ वाहिगुरु जो तेरे नाम विच जुड़े ए तन माया पाया प्यारे ए जड़ा तन है नू माया दी पाह लगी पई माया दी मैल लगी पई ए तन माया पाया प्यारे लीतला लब रंगाए मेरे कंत न पावे चोरड़ा प्यारे क्यों धन से जे शरीर रूपी चोलड़ा जिसनू लब दी मैल है माया दी पाह लगी है एडा मैला चोला है ओ स्वामी कंत इसनू किस तरह प्रवान करेगा मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन से जे जाए हजूर कहंदे न हाँ कुर्बाने जाऊ मेहरबाना हाँ कुर्बाने जाऊ हाँ कुर्बाने जाओ तिना के लैण जो तेरा जिन्हां ने मैल तू अपने आप नू दूर की अपने मन ते तन दे उते नाम रूपी सुंदर चोला पहने नाम रूपी सुंदर ड्रेस

पर जो सच्चा रंग है एक कदे फिक्का नहीं पे। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना हो गई नैला के दाग। काया रंगन जे थी प्यारे, पाइए नाम मजीठ, अपने मन दे उत्ते मजीठ रंग चढ़ा। और सारे रंग कलर जड़े हैं आस्ता आस्ता फिके पै जाते हैं, पर मजीठ का रंग ऐसा होता है उन्हों जो जो तो हो त्यों त्यों निखरता है। इसे तरह नाम रूपी जड़ा मजीठा चोला है रंग है एक कदे फिका नहीं पे। चाहे मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, सुख आ जाए, पर पैरी सत्संग दुखा सुखा दे रंग विच कई बार इंसान घाबर जाते, पर जिस वेले नाम रूपी गुरु दे प्यार दा रंग चढ़ जाता है फिर काबर मुक जाता है। चाहे आरे हेठां बहना पै जाए, भाई मती दास नूं फिर ओ रंग फिक्का नहीं पैंदा। भाई मनी सिंह साहब बंद बंद कटांदे हन, सिखी दा रंग कदे भी मध्यम नहीं होया। रोज अरदास करदे हां गुरु के सिख सिखी वास्ते चरखड़ियां ते चढ़ गए, बंद बंद कटवाया, पुठियां खला नवाईया, इत्थे बस नहीं, नाल मतावां पैणा दी भी आपां रोज अरदास करदे हां। जिन्हां बीबियां ने जिन्हां पैणा ने मीर मन्नू दी जेल च लाहौर दी जेल, वो जेल मैं वेखी पार्टीशन तो पहला जिथे सिंघां नूं शहीद किया जांदा सी, जिथे गुरु की बच्चियां नूं कैद किया सी, उस गुरुद्वारे का नाम सी शहीदगंज। डेरा साहब भी गुरुद्वारा पंजे पातशाह जी का तुसीं भी दर्शन किए होंगे, पर गुरुद्वारा शहीदगंज जो सी वो जगह सी जिथे सिखां ते जुल्म हुंदा सी, सिखां नूं कतल करके खूहां विच सुट्टिया जांदा सी। तो जदों पड़चोल होई सन 35-36 दी गल है, तो उन्हां खूहां विचों सिखां दीआं हड्डियां निकलियां, किरपानां निकलियां, ओ जो पत्थर गर्भवती भैणां दे पेट ते रखे जांदे सन ओह भी निकले, बड़े बड़े बोझ। पर मीर मनु दी जेल च पैणा ने बचियां ने सिखी सिदक नहीं हारिया। उन्हां पैणा दी रोज अरदास होती, मातावां पैणा बच्चियां अगे बेनती, सिखी सब तो उच्चा पदार्थ है। तक लो सवा सवा मन पीसना रोज पीसना, सवा मन दाने चक्की रोज पीसने, फिर रोटी रजवी नहीं मिलनी, खन्नी खन्नी रोटी दे गुजारा। खन्नी कहंदे रोटी दा चौथा हिस्सा, फिर इत्थे ही बस नहीं। अपने बच्चियां नूं जालमा ने गोद च बच्चा पिया है उन्हूं खिंच के ते उन्हूं टोटे कर दे, नेज़ियां ते टंगा दे ते कहना हुण ईमान मन लो मुसलमान बन जाओ। पर उन्हां पैणा ने बच्चियां नूं कुर्बान कराया पर सिखी नहीं छड़ी। ऐसा रंग चढ़िया सिखी का एडिया मुसीबतां विच, तो जिन्हों चढ़ गया हजूर कहंदे काया रंगन जे थिए प्यारे, पाइए नाव मजीठ, रंगन वाला जे रंगे साहेब ऐसा, और रंग कदे फिका नहीं। दुनिया जितने तक रहेगी उन्हां शहीदां दीआं यादां, उन्हां दा प्यार दा रंग सदा चमकदा रहे। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कन तिना के पास धूड़ तिना की जे मिले, हजूर कहंदे मैं उन्हां दे चरणा दी धूड़ी लैंदा। कहो नानक की अरदास आपे साजे।

unanswered prayer करके कीर्तन भी समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद दी दे बच्चियां वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रमाण करनी तो आओ हम अनुसार पाठ सारे मिलके करिए अनगुरु नानक पातशाह मेहरबान सदगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई भाई साहब जी जिन्होंने आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेज गाउंड अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग की दात बख्शो।

दो चीजा ने एक चंगयाई एक बुरियाई चंगयाइयां कठियां करनिया होन तो कुछ कठिनाइयां दा सामना करना पैंदा है। चंगियाइयां मिलदियां बड़ियां औखियां ने, बुरियाइयां कठियां करनिया होन तुहानू दूर नहीं जाना पएगा, तुहाडे कदमां दे नाल ही बुरियाइयां हन। चंगियाइयां नू इकत्र करन वास्ते तुहानू बहुत सारा जिंदगी दा लंबा सफर करना पएगा। तो बुरियाइयां तो बिल्कुल नाल ने, जदों मर्जी कठियां कर लो। हसूर ने कहना कि बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। जिस दे पल्ले चंगियाइयां होण उहदे कोल सिदक आ जांदा है, ते कई वार अकाल पुरख उहदे सिदक दी परख भी करदा है। एक वार रसना पवित्र करो ते आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्ना नहीं आख्या एक बारी फिर आखो प्यार नाल सतनाम श्री। सिदक दी परख है ना, मेरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जागदी जोत दो तलवारां पहन के बहुत मिठा बोलदे सन। हजूर संगतां नूं उपदेश दे रहे ने, बहुत सारियां संगतां दर्शन करदियां ने, ते जिहड़ा भी दर्शन करदा है होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झट्टी है, ते सारे पढ़ो तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी। जिथे होर सिख सेवा करदे ने उथे एक सिख जिसका नाम भाई हरपाल है, वो भी सेवा करता है। सेवा करदिया करदिया अज कन्ना विच एक आवाज आई,

सो काल वडानी रे रसी नान का कौन रसी चरेचर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तो रंग को रंग से कूदत पौन के गौन को जात ने पारी कुजान के पूप बली।